वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चित्तस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभ तुहि अछू तुहि अछ तुहि जतस्तु हि व्रतस्तु

त्वा प्रसाद कबित हुक मल हरि गज गदह विभूत दारि गिद्वा मसान बास करी करत है गुग मट बास लग डोलत उदास मृग दरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सदयता ही जिकी बटय देत बंदर सदीव पाए नंगई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है भूत बन चार छित छाना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है दृण के भजैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया दाहे पंछ की बड़ैया देत बगुला बिटाल ब्रिक धैनी ठानियत है जेते बड़ ज्ञानी तिन्नो जानी पब खानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया दाहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के भसैया दाहे बांदरी गजैया कहे आदस फिरैया दत भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भसैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया दाहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गोजर गोपाल सब धेन चारी लिखी के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जाम दूत कहियत है मूढ़ रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोगी जटा धारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्यौली गरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड ना बहत है मानव फनिंद देव दानव ना पाव वेद वेद योग देव नेद नेद कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल हांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा रिशन कित वेद यौ पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बितय है मोन दीम तार कित अश्विनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है वीर यौ पिकंबर कित गन न परत एत भूम हित होय के फेर भूम ही मिलय है जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीप औदलीब कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक दोप जी कपट फेस बोस दी अनेक दानी वावत है शीस को कह भयो मल्ल जो पकाडत अनेक डंड सोतना डंडोत अस डांग अथ तीस को कह भयो रोगी जो पेडार रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने होरायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस को शीस पटकत जाके कान में खजूर धसे मूड़ छटकत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो फेट जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे फेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करियो ही करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पां भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांग कहूँ जो किया बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे वारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकार पर शीत काल गुंजन ओगदा अनेक दापकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाकु ठारन सो मार ही
कहा भयो फांस डार बुढ़ जड़ दंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जब पाइये तापनाथ तापना अनेक तरन घायल सहत है जाप के किए जब पायत अजाप देव भूतना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जब नारायण पाइयत अनल आकाश पंची डोल बो करत

सोई राज कर ही मोई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही के सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देव राम सीत सोई पूजा निवाज उई मान सब एक पय अनेक को प्रमाव है देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे बच के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जस तेज दीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कूकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी।

कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के सोख सोखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जछ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जछ विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ।

तीरथ तीरथ भरमत्सु भरम गई अगन होत्र गई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र दूचरत सुकरम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ असुमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्भ गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार गई भजत एक पग निराधार कई नेह देह गई गेह वास गई ब्रह्म देश देशन उदा

पितंजय रचय क्षत्रिय छत्र चितंजय रागन रेगन रोगभण जय द्वैघन दागन दोख गण जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आव प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग।

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए। न राग रंग रूप है, न रोग राग रेग है, अधोग ताग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेग से गेक है, सदीव विश्ववर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववर्ण है, जिमी जमान के बिगे सदीव करम भरम है। अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर मैं विशेख आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण या कुरान नित नित कह बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम मैं बताइए, अगंज आद देव है कहो सो कैस पाइये। जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानिए। न देह है न गेह है, न जात है न बात है, न मंत्र है न मित्र है, न तात है न मात है। न अंग है न रंग है, न संग है न साध है, न दोख है न दाग है, न द्वैख है न देह है। न सिंह है न स्यार है, न राव है न रंग है, न मान है न मौत है, न साक है न संग है।

बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है।

अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न चल है, न छिद्र है, न

न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है, न आद है न गाद है न

तथापि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्त पी सेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपा।

हस्त कीट बिखै बस सब ठौर मैं निरधार। जात पात ना तात जाको मंत्र मात ना मित्र, सर्व ठौर बिखै रमयो जय चक्र चिहन न चित्र। आद देवो दार मूर्त अगाध नाद अनंत, आद अंत न जानिए।

जय छ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसरंगे बिखे बिराजे सूत्र भी वह नाहे गुड गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबत पतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम स हंस फरण हिनेत पूर्ण होत सोध सोध हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागब गढ़त गाढ़ अनंत हर हर कहियो सब

जेते पदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम नरंकार निरपकार निरलंभ आद अनिल अनाद असंभ

आप आपने बुध है जेती परंत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखान जाए पसारा कह पिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतवज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं समट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जुते उठवत तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दह लिहो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छय करता श्री अल दुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दुख न तसै ब्यापत कोई अड़ल।

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं तऊ चले राख आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो।

हर बचन का सर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़ ध्यान है संत अंत लाएंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा तिन बेदियन की कुल बिखा प्रगटे नानक राय सब सिखण को सुख दय जह तह भय सहाय दोहरा ठीकर फोर दिन।

तन बुद्ध सौदी पक ज्यों जियारे ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार भारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परे लौ लेहु सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सतद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बबाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कूं आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्रीयस

सुदक वेखना प्रतिया प्रधन रू कन्नी सुदक पहला दबारी खा नानक हंस आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला सब सुद